जोजोलपाथौ नेपाल सम्बत चिन्चासव पी खुद येनलाथो द्वादशी थो रेडियो नेपाल ख नेनादिस जिरुबी पाके नेपाल भाषा या समाचार। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र संघीय चे छकगु महासभा बोटी कायता नेपाली प्रतिनिधि मण्डलीय नेतृत्व येनादिसे मेघ सनिल अमेरिका न्युयोर्क के छायादिगुदु वेक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग कतार एयरवेज विमान पाखे कतार या दोहा जोसे ओके पाखे छायादिगु ख प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्र संज्ञा नीति नेपाल स्थायी नियोग ठेङ्के धुङ्कानी वेक यता भ्रमण या विशेष परराष्ट्र सचिव संयुक्त राष्ट्र संज्ञा नीति नेपाल या स्थायी प्रतिनिधि अमेरिका या नीति नेपाल या कार्यवाहक राजदूत न्युयोर्क दुगु नेपाल या वाणिज्य महादूत ब्रिफिङ याना दिप प्रधानमन्त्री शाह वेक या हन नेपाल नीति स्थायी प्रतिनिधि पिन्स गोसा गोइगु ज्या जोखे बोतिक दि कने प्रधानमन्त्री शाह व संयुक्त राष्ट्र संज्ञा महासचिव एन्टोनियो गुटरेस तथी सलजुई थोयान लियु प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्र संज्ञा महासभा याता क घना दि गुज्याजो दु असोज नौ गते प्रधानमन्त्री शाह न्युयोर्क सा दोहा या नितिन छायादि वेक याता न्युयोर्क दुगु जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले संयुक्त राष्ट्र संज्ञा नीति नेपाल स्थायी प्रतिनिधि अमेरिका नीति नेपाल या कार्यवाहक राजदूत नापाङ या अधिकारी पिन्सा बिदा बिया दिगु ज्याजो दुसा अथियाना प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र सया चे छक्कगु महासभा बोती काता चाया दि धुङ्कानी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री या ज्याभाला अर्थमन्त्री डाक्टर सोर्नेम वाग्ले क घना दिगु राष्ट्रपति कार्यालय धागु दुसा प्रधानमन्त्री शाह थोए असोज दस गते नेपाल यहाँ छाएको ज्याधलदु। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल संयुक्त राष्ट्र संज्ञा चे छकगु महासभा भोटी क्यागु झोले थिति देया उच्च अधिकारी नापानीगु दे दति सल व्याका दिगुदु संयुक्त राष्ट्र संज्ञा मुख्यालय न्युयोर्क दुगु नाप्लाई ज्याझोले वेकलाम पोर्चुगलिया विदेश मन्त्री पाउलो रान्जेल जापान विदेश मन्त्री मोटेगी तोसी मिसु पोल्यान्ड उप प्रधानमन्त्री व परराष्ट्र मन्त्री राडोस्ला सिकोर इसकी युरोपेली संघीय कार्यकारी उपाध्यक्ष टेरेसा रिबेरा व भुटानिया प्रधानमन्त्री छिरिङ तोक्बे नापा नाप्लाना दिगु ज्यासोदु नाप्ला ज्यासोले नेपाल नापा स्वापु दुगु निगु दे दथुया स्वापु थथव्याता बल्लाकीगु विशेष सहलह या त अञ्च बल्लाकीगु ओसेनाकीगु विशेष सहल जुगु परराष्ट्र मन्त्री खनाल्या सचिवालय धागुदु जापानिया विदेश मन्त्री मोटेगी नेपाले आ वोगु हाठ्यान जागु खुसी बासन जुगु जनधन्य क्षेत्रीयता कया दुःख पङ्का दिसे छे द मधुपिन्ता बिचाहाका दिगुदु वेकल हाठ्यान जागु थो झाँका लिपा उद्धार व ग्वालिसान नेपाल सरकार यानासँग कुतयाता चोछ्या दिसे आपतकालीन अवस्था निसे मध्यम व दीर्घकालीन पलातक जापानिया ग्वाली दयाचोनी गु बचना पापङका दिगु दुसा अथियाना इयु या कार्यकारी उपाध्यक्ष रिबेरा नापाया सहलस मन्त्री खनाल भोटेकोसी खुसी बालिपा नेपाया कष्टन जागु लकस याता कया दुःख पङ्का दिसे विचार ह्याका दिए एकैबद्धता पङ्का दिगु दु भुटान या प्रधानमन्त्री तिग्बे नापाया नाप्लाई ज्यासोले नेपाल भुटान स्वापिया सधा जलवायु उपाय हुने उपया चङ्गु प्राकृतिक विपद या विशेष सहल जुगु खसा नेपाल व भुटान निगु पर्वतीय दे जुगुले जलवायु उपाय लाग्या सहकार्य या त अञ्च बलाकेगु विशेष निगु पक्ष बव्यादिगु दु अथियाना परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खलानाम हिग संयुक्त राज्य अमेरिका न्युयोर्क भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशङ्कर नापा नाप्लाना दिगुदु नाप्लागु झोले परराष्ट्र मन्त्री खनाला नेपाले दुगु नेपाले वोगु विनाशन जागु भोटेकोसी खुसीबा लिपा भारत सरकार व भारतीय जनता पङ्कगु एकबद्धता व थत्य लल हागु महत्व जागु ग्वालियाता लसहना देशना दिला नाप्लाई ज्याझोले निम्ह मन्त्री पिसा नेपाल भारत या विशेषण थिति पक्ष व थथ या त बालाकेको विशेषण विचारकाल विलयना दिगु मन्त्री खनाल सचिवालय धया दिगु दुसा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल व अमेरिकी राजनैतिक मामिला नापाया उपविदेश मन्त्री एलिसन हुकर नापा निगु दे दथि सहल व्याकगु दु नाप्लागु ज्याझोले नेपाल व अमेरिका दथिया स्वाफु आ भोटेकोसी खुसी छ वोगु खुसी पालिपा राहत पुननिर्माण या ज्यात नापाया विशेषण सहल जुगु अन दुगु नेपाली नियोग धागु दु थो लसता मन्त्री खनाल उपविदेश मन्त्री हुकर दथि पुननिर्माण या कुतेगु विशेषण अमेरिका मज्जिक ग्वाली जुइगु विशेषण नापा खनाबला जुगु ख
प्रतिनिधि सभाया मिगया बैठके संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानून नापाया महासन्धि कथया राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार शिवेपिनिया लागा सामुद्रिक जैविक विविधता संरक्षण व ढिसिल्लाका छेलाबुला याग विशेष सम्झौता अनुमोदन चुगुदु सम्झौता दथिया सलसन लङ्गु न्यासिया दिसे कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुविता गौतम सामुद्रिक सम्पदा नेपायता लब थिनीगुयाना सम्झौता छेलाबुला नीति मागु कानून देके त सरकार आफ्ना थ्याबिया चुनागु धया दिल सलसन संसद सामुद्रिक सम्पदा यात्रा देय समृद्धि व सेनलागु विकास आज नापा स्वाया मागु कना दिल संसद पेस अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तेस छेलाबुला नीति मागु कानून याक्न देका छेलाबुला हेत बबिया दिल मिगया बैठक राष्ट्रिय सभासम बोलङ्गु संक्रामक पशु लुए नियन्त्रण विधेयक 2083 विशेष राष्ट्रिय सभासम वोगु हसना टेबुल जुगुदु थोयान बैठक संसद पिन्स राष्ट्र संज्ञा महासभा नेपाल शान्ति सार्वभौमिकता जलवायु न्याय हिमाल संरक्षण विपद व्यवस्थापन व अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विशेष हली दथि हवेता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सहायता सुझाव दिसागुदु संसद पिस यहाँ त्रिपुरेश्वरी बस चालक अर्जुन दोङ आत्मा दह यागु बसे तगु मी या विशेषण सत्य तथ्य खपिने हेता तथ्य न्यायिक छानबिन समिति निशु नेता मागेन दिल सांसद पिसा यात्रु व चालक सुरक्षा नीति लिचो लाइगु कथन ट्राफिक व्यवस्थापन सुरक्षित व्यवस्थित सड़क पूर्वाधार निर्माण व राज्य नियमकारी निकाय मर्यादित जुइत बबिया दिल अथिएन सांसद पिसा बजारे उपया चोङगु हाकुगु बजार नियन्त्रण थिके जुगु लिता नियन्त्रण याता थिथि जिल्ला बोलाना चोङगु स्क्रब टाइफस डेङ्गी नापाया संक्रामक लुए नियन्त्रण नीति कुत याता राष्ट्रिय निकुञ्ज जखया लाग्या मानव वन्य जन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण या कुत याना वित्त सरकार ध्यान को सलाह दिगुदु प्रतिनिधि सभा या मेगु बैठक थौ सुतेसिया झिन्छता इलेक्ट्रोनिकु गोसादु सरकार जेएनजी आन्दोलन या सही छेज व तस्क घापा जुपी व यक्को घापा जुपिन त स्नातक तह तक ढेवा मायाक शिक्षा लल हाइगु जुगुदु शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय देकगु जेएनजी आन्दोलन या सही छेज व खापा जुपिन्ता जेवामाक शिक्षा लल हागु नापाया मापदण्ड 2083 सहित व शहीद या लिक चोम्पी दाजु किज तथा केहे व तस्कम व यको घापा जुपिन्ता परिचय पौ नापा लाभग्राही या कथ क घागु दु मापदण्ड कथ आधारभूत तहसा लाभग्राही या त प्रचलित कानून कथ केवा म्याक शिक्षा नापा व स झोल व सफु व सिकाई झोल या नीति कक्षा एक निशे पाँच तक कक्षा छ निशे आठ तक ढेवा नापा स्थानीय तह पाखे लल ह्यागु प्रस्ताव यागु दुस माध्यमिक तहस कक्षा नौ व दस व कक्षा एघार व बाह्र या नीति ढेवा नापा व स झोल सफु व से केगु हल झोल नापा व्यवस्था यागुदु अध्ययन स्नातक तह तक अध्ययन नीति फुकुम विश्वविद्यालय लल हाकिगु छात्रवृत्ति कोटा मध्य निश्चित कोटा लाभग्राह्य नीति आरक्षण या मागु व्यवस्था यागुदु थोक कोटा लिए त छुटे जोपी विद्यार्थी त्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पाखे ढेबा नापा छात्रवृत्ति लल ह्यागु व्यवस्था न मापदण्डके तगुदु रसुवा खुसीपासा सियङ्गु गल्छी साप्रोवेसी सडक खण्डे असोज लादुने यातायात न्याकिगु याना ज्याजुया चोङ्गु सडक विभाग अन्थागुदु विभागीय कथा आयुको थे थासे सडक भिङ्के धुङ्कानी यातायात न्यागुदु सडक विभागीय महानिर्देशक डाक्टर विजय जयसिंह गल्छी साप्रोवेसी तकया सडक मोहनी तक यातायात न्याकिगु याना ज्याजुया चोङ्गुदु वेकया कथा धादिङ नुवाकोट स्वाइगु कोल्पु खुसी अस्थायी मर्मत सिधेका यातायात न्या धुङ्कगुदु कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी वैगु इले किसान त्यता मालिगु रासायनिक सा अपुइगु कथा आपूर्ति याता ज्याजुया सङ्गु धयादिगुदु वैगु इलेया नीति मालिगु सा न्याता व अर्थ मन्त्रालयसँग झिगु अर्ब बराबर स्रोत सहमति वोगु वेक्लङ्कनादिगुदु स्रोत सहमति जुई सात थो ढेवास मागु सा न्यागु नीति टेन्डर आह्वान यागु प्रक्रिया नानी हिज्याकेगु ज्याजुया चोङ्गु मन्त्री चौधरी या सचिवालय थागु ख सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा कला व भाषा साहित्य प्रवर्धन साहित्यिक पत्रकारिता लागा महत्त्व जागो योगदान देशना वया चङ्गु धयादिगुदु नेपाल साहित्यिक पत्रकार संज्ञा प्रतिनिधि नापाम हिग मन्त्रालय जुगु नापलाई ज्याझोले मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा साहित्यिक पत्रकारिता नुगु पुस्ता तक्क ठेङ्केगु महत्त्व जागो माध्यम जुगु कनादिगुदु संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा थिथि भाषाभाषी व मातृ भ्या पिथनीगु पत्र पत्रिका स्वापुदुगु समुदाय भ्या संस्कृति व सामाजिक अवस्था
अवस्था विशेष थुके त अफुगु कना दिल साहित्यिक पत्रकारसँग मा भाषा पत्र पत्रिका नीति ब्याग्ल मापदण्ड देके मागु साहित्यिक अनलाइन पत्र पत्रिका या त नापा वर्गीकरण या मापदण्ड दुने लाके मागु विशेष सूचना ल लाना दिगु ख नेपाली कङ्ग्रेस थौ दियङ्क पालिका तहया अधिवेशन या टेङ्गु दु झिङ्याक गुमा अधिवेशन कथा स्थानीय तहया साङ्गठनिक संरचना देखि गुझोले पालिका अधिवेशन जुत सङ्गु ख छु छिटफुट लागा बाहेक दियङ्क या ओडा तक्क लस्ता जाक शान्ति नक्सा नेतृत्व लेगु ज्यापुने धुङ्कगु कङ्ग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समिति धागु दु खुसीबा चल सलिचो लागु नुवाकोटो धादिङ्गा फुकङ ओडा तक्क मिगतक अधिवेशन पुङकीगु धागु ख नुगु विधान वा निर्वाचन निर्देशिका कथं थौ जुइगु पालिका अधिवेशन स पालिका पतिक न्यामा पदाधिकारी लिई उकी क्षमा सभापति वा क्षमा मिसाना पानीमा उपसभापति क्षमा सचिव वा क्षमा सहसचिव निर्वाचित जुइगु व्यवस्था दु दा भलिस धासा सभापति निर्वाचित कार्य समिति दुज मध्य स मनोनयन यागु प्रावधान दु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संगठन शुद्धिकरण या नीति निलायङ्क विशेष अभियान ह्याकेट्याङ्गु दु पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नास्वी स मङ्गलबार चङ्गु केन्द्रीय कार्य संयोजन समिति बैठक अभियान ह्याकेगु व उकिया आफ्ना योजना वैगु सचिवालय बैठक कोछिगु कोचिनाजुगु प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला जानकारी व्यादिगु दुसा बैठक पार्टी संयोजक दहाल व सह संयोजक माधव कुमार नेपाल आयागु राजनैतिक लक सह पार्टी मिते मागु ज्याभाला व पार्टी लिपाङ्गु गतिविधि विशेषण जानकारी याका दिगु ख ऊर्जा जलस्रोत व सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ व गृहमन्त्री सुदन गुरुङ मौसम पूर्वानुमान नापा थौ निसे देनियङ्क वा आपला वैगु विशेषण जानकारी कया दिगु ख मौसम विज्ञान विभाग या कथ मौसम पूर्वानुमान महाशाखा बङ्गाल या खाडीसम्म विकसित जुवा सोङ्गु न्यूनचापीय प्रणाली या प्रभाव थौ निसे लाकिगु वा या विशेष जानकारी कया दिगु ख संघीय संसद प्रतिनिधि सभा या बैठक थौचोने तेङ्गु दु सिंहदरबारे सुतेसिया झिन्छता इलाया नीति कोचिना तगु बैठके सभामुख डोल प्रसाद अर्याल राष्ट्रपति कार्यालयसँग वैगु प्रधानमन्त्री या ज्याभाला नापा या पौ या बेहोरा न्याङ्का दि बैठके पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल फोहोर मैला व्यवस्थापन विधेयक 2083 निभया दिगु जज दुसा अथियाना अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णी मुआगले नागरिक लगानी कोष स्वकको संशोधन विधेयक 2083 हो भुक्तानी तथा फर्चे टापाङको संशोधन विधेयक 2083 दति बिचा यामा धेगु प्रस्ताव न्यवया दिगु ज्यादलदु अथियाना कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी राष्ट्रिय सभासँग बोलङ्गु संक्रामक पशुले नियन्त्रण विधेयक 2083 दति बिचा यामा धेगु प्रस्ताव न्यवया दिगु ज्याजदु लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय नेपालगञ्जो जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेसा मङ्कापुच स वङ्गु चाने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 14 स पेङ्गु राउन्ड हवाई फायर याना भारत या बहर बहराइच लिक रुपै डिया या चकिया रोड या निपेद दुमा नदिम राई या त जोङ्गु दु आदेशन पिनिया बुख थुगुसिया एल निनो आतकया शक्तिशाली जुइगु अनुमान नापा एसियाया थिथि लाग्या खडेरी तस्कन जुइगु ल या म व डरेलोया जोखिम उपैगु ख्यासो बिगु तु तुक्या लिचो वा पाम चिक वा या नापाया नसा जोलङ्खे उत्पादने म जुइगु व हलिनियङ्क नसा जोलङ या म जुइगु ख्यासो बिगु दु संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संयुक्त राष्ट्र संघ या महासभा या झोले अमेरिकी अधिकारी इरानी प्रतिनिधि मण्डल दथि सोघौ ताहाकु यक्को बालाको खलामाला जुगु दया दिगु दु इरानी विदेश मन्त्री अब्बास अराक्ची व अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकफ दति न्युयोर्क नाप्लाया जा जुगु इरानी सरकार सञ्चार माध्यम तेस थागु ख आ मौसमीय जानकारी थौ कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश हिमाली व पहाडी लगायत छुन्तासे व कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश हिमाली व पहाडी लगाया मोथासे मलनापा लाप्सा तोया मध्यम टकया वा वैगु चपुकुहा वैगु सम्भावना दुसा मधेस प्रदेश व कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश तराई लगाया छुन्तासे सुदूर पश्चिम प्रदेश तराई लगाया मोथासे मलनापा लाप्सा तोया मध्यम टकया वा वैगु जानकारी बिगु दुसा कोशी बागमती प्रदेश पहाडी लागया छगु निगु थासे आफ्ना वा वैगु सम्भावना कु बिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापु दु वङ्गु निपे घौस ये सोनिग्या क्वाज निगुगु फुटी खुगु डिग्री सेल्सियस जति लुयाउगु खसा थौ निने ये सोनिग्या क्वाज नि च्यागु निसे सुइगु डिग्री सेल्सियस जति लुइगु अनुमान दु थौ सुथे ये सोनि गले यहाँ त यी जुया पी खुगु मिनेटे लुयाउगु सूर्य शनि ल खुता यी जुया पेङ्गु मिनेटे बी रेडियो नेपाल भाषा समाचार पु चिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिशा शुभ

0: हजुर निनामी बाजुमेस्मी चिम्छे निनाचु नदीको ख रेडियो नेपाल अले थौ बुधबार जीवन दबु प्राविधिक पासा पराग पोखरेल अले पुष्प ब्रजाचार्य नपजी उपेसुयाचना अले थौ थाना स्टुडियो स प्राध्यापक डाक्टर कविन्द्र ब्रजाचार्य झायादिगु दु लस्कुस दु कविन्द्र जु
1: सुहा
0: हजुर निनामी बाजुमेस्मी वेक नप सल या न्हने वेक फच्चा मसिका चिन्त न्हवे वेक कविन्द्र ब्रजाचार्य वेक कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिक अप्टोमोलोजिस्ट वो एकाडेमिक डाइरेक्टर लुम्बिनी मिखा इन्स्टिच्युट थन वेकलाई चाहिँ इङ्ग्लिस चुयादिगुले चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली न थन त्यहाँ अहिले रिसर्च सेन्टर वेकलाई चाहिँ छ म निर्देशक कथ प्राज्ञिक निर्देशक कथ वेकलाई चाहिँ जाइनाचु नादिगु दु धासा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वेकलाई नकत्नी पिएचडी न यहाँ नादिल अहिले ऊ नि त्रिभुवन विश्वविद्यालय वेक चाहिँ बुद्धिजमे चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट न ख कति कि वेकलाई चाहिँ थन मिखायुपट्टि विशेष वेक विशेषज्ञ जुगु हुने चाहिँ वेकमा चाहिँ यको यो थन शिर्पा न अहिले अवार्ड न क्यादिगु दु वेक यो बच्चा मसिके गु हिने कति कि वेक या त चाहिँ सोगला गोल्ड मेडलले वेकलाई चाहिँ क्यादि हुँदाछ चाहिँ प्रोफेसर यासु तानो ट्राभल ग्रान्ड अवार्ड हङकङ पाखे 2018 अहिले बेस्ट पोस्टर अवार्ड अपावो हङकङ 2018 अथे थन थिति कथ यो अवार्ड न क्यादि धङ्कुगु दु ओलिसले से गथे कि वेक चाहिँ छ म नेपाल पेडियाट्रिक अप्थलमोलोजी व स्ट्राउस सोसाइटी वेक चाहिँ मु छ्यान्जिन ख एक्जिक्युटिभ मेम्बर वेक साग सोसाइटी अफ स्ट्राउस र पेडियाट्रिक अप्थलमोलोजी या वेक चाहिँ एक्जिक्युटिभ मेम्बर न ख अहिले वेकमा चाहिँ निगु चाहिँ थगु चाहिँ रिसर्च आर्टिकल एकदम डबल ब्लाइन्ड प्योर रिभ्यू पाएँ वेकमा चाहिँ जर्नलले वेकमा थकु चोसुन पिटनादी रङ्गल धास राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स चाहिँ वेकलाई चाहिँ स्विगु ज्यापोन न्यवादी रङ्गल वेक ख प्राध्यापक डाक्टर कविन्द्र ब्रजाचार्य यहाँ भाजमे वेकले से थोय विशेष नियन्त्रण यागु जुई धासे वेकमा चोयादिगु वेक यो चोसा यो छपो नेपाल भाषा मेत्यादि त जी प्राविधिक भाषा त इनापेना

लगै छ। सम्भावित वर्षा के कारण बाढ़, भूस्खलन, गिगरान बहाव, डुबान तथा सड़क हवा यातायात में सेहो अवरोध भ सकबा कारण सम्पूर्ण नागरिक के आवश्यक सावधानी अपनेबा लेल विभाग अनुरोध कलक अछि। विभाग ट्रैकिंग तथा हिमालय क्षेत्र में जाके योजना बनाने व्यक्ति सबके मौसम सुधार नहीं भेल धरि यात्रा स्थगित वा पुनर्विचार करबाक लेल विभाग तथा स्थानीय प्रशासन से जारी होवला सूचना नियमित रूप में देखल लेल आवश्यक अवस्था में संबंधित निकाय के निर्देशन पालना कर लेल सेहो अनुरोध कलक अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस नेपाल के विपद जलवायु संकट के जोखिम पुष्टि केने कहत विश्व समुदाय के ध्यान आकर्षण कर लेने छ। राष्ट्रसभा के 81 महासभा अंतर्गत साधारण सत्र के उद्घाटन सत्र के संबोधन करवा क्रम में महासचिव गुटेरेस जलवायु परिवर्तन के कारण तापक्रम वृद्धि भ नेपाल सहित हिमाली देश में अधिक प्रभाव पड़ल बतौलन। अहिना तापक्रम वृद्धि भ हिमनदी पगल के क्रम बढ़ रहा विश्व के अखनो अधिक समस्या झेल पड़त बतौलन। महासचिव गुटेरेस 3 वर्ष पहिने नेपाल भ्रमण के क्रम में हिमनदी तीव्र गति में पघिल रहल कहत विश्व समुदाय के चेतावनी देने छलथि। ओ नेपाल के भूटिकोशी बाढ़ जेहन विपद जलवायु जन्य समस्या के वास्तविकता के में परिणत कने स्पष्ट कलन। महासचिव गुटेरेस जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम आव भविष्य के विषय नहीं भ वर्तमान के वास्तविकता बन चुकल स्पष्ट करत विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन के न्यून योगदान करे वाला देश सब ऐ के अधिक मूल चुका रहल चर्च कलन। ओ जलवायु न्याय के आवश्यकता रहल कहित प्रदूषण करे वाला सब ऐ के मूल्य तिरवाक चाही आ जलवायु जन्य विपद से प्रभावित जोखिम में रहल देश के क्षतिपूर्ति स्वरूप न्याय तथा आवश्यक विपत्तीय सहयोग भेटबाक चाही ओ धारणा व्यक्त कलन। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिर सिन्हा सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल के निरीक्षण भ्रमण कलने निरीक्षण के क्रम में मंत्री तिमिर सिन्हा रेडियो नेपाल के प्रमुख प्रसारण स्टूडियो के संगे संगीत नाट्य समाचार स्टूडियो में पहुंचकर रेडियो नेपाल से प्रसारण हो वाला समाचार तथा कार्यक्रम और प्रविधि के संबंध में जानकारी ले लें। निरीक्षण के क्रम में मंत्री तिमिर सिन्हा देश के प्रसारण इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देने संस्था रेडियो नेपाल आव के दिन में आर संचार माध्यम संग प्रतिस्पर्धा का नागरिक के सुसूचित बनेबाक चाही पर जोर दिलन। एहि अवसर पर मंत्री तिमिर सिन्हा सार्वजनिक सेवा प्रसारण के सही दिश आगू बढ़ावा सबसे पहल पहुँच बाहर रहल नागरिक में सही सूचना पहुँचाबा अग्रसर हेबाक चाही बतौलन। रेडियो नेपाल के सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष उर्वशी वसनियात संचालक समिति सदस्य सुविता रिसाल कायम मुकायम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौत आ रेडियो नेपाल के पदाधिकारी सब हुनका स्वागत कने छलथ। भारी वर्षा के कारण बाढ़ तथा भूस्खलन के जोखिम बढ़ सकबाक

0: कृत संतोष
1: हुमानी आ सिसनेरी के रामचंद्र भंज्यांग सहिठौड़ा तरफ सवारी प्रस्थान कर दिल जातो बतौलन। सुवेदी की सारे कांति राजमार्ग अभिषे भीमफेदी देवराली कुलेखानी सड़क खंड में सांझ के 7 बजे पश्चात रात के समय में सवारी आवागमन पूर्ण रूप में बंद कायल जात। भारी वर्षा के कारण बाढ़ तथा भूस्खलन के संभावना के जोखिम के मद्देनजर करे तो कल गेल समय भीतर मात्र यात्रा करवाक लेल प्रशासन आग्रह सेहो कयने अछि। मधेश के जीवन रेखा के रूप में रहल हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत सीधा धनसा जोड़े वाला कमला पुल के निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंचल है। सीधा क्षेत्र नंबर 1 के सांसद बबलू गुप्ता, क्षेत्र नंबर 2 के सांसद शिवशंकर यादव के सचिवालय के हिसाबे पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लमसाल संग भेर विचार विमर्श पश्चात पुल निर्माण की बाकी काज आगू बढ़ल है। पुल आवे वाला आघन महीना से संचालन में आवासन काज भ रहा सचिवालय जनौलक।

उद्धार में संलग्न टोली जहाज भीतर तथा मध्य कालीमांचन प्रांत के तटीय क्षेत्र में सब भेटल अछि त गोताखोर सब जहाज के केबिन में खोजी के केंद्रित कयने अछि। मुदा पानी के नीचा कम दृश्यता आ तीव्र समुद्री धारा के कारण उद्धार कार्य में कठिनाई भ रहल एजेंसी जनौलक अछि। लगभग 17,000 टापू रहल इंडोनेशिया में विभिन्न टापू के जोड़ तथा यात्रा के लिए फेरी आ अन्य समुद्री यातायात में अधिक निर्भरता रहल अछि। मौसम, समुद्री अवस्था आ जहाज के सुरक्षा संबंधी कारण एत समय समय में समुद्री दुर्घटना होत आयल अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। परसों 9 गते शुक्रवार से 11 गते तक देश के विभिन्न स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना। आवश्यक तैयारी, समन्वय और पूर्व सतर्कता अपनाने के लिए संबंधित निकायों से प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का आग्रह। प्रधानमंत्री शाह कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। भोटेकोशी बाढ़ के बाद ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए 3.90 खरब रुपए से अधिक की आवश्यकता पड़ने का प्रारंभिक अनुमान और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में फिर से तनाव शुरू। अब समाचार विस्तार से। मौसम विज्ञान विभाग ने परसों 9 गते शुक्रवार से 11 गते रविवार तक देश के विभिन्न स्थानों पर गरज चमक आंधी और भारी से

बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सतर्कता अपनाने का आग्रह किया है। विभाग ने संभावित बारिश से बाढ़, भूस्खलन, मलबा बहाव और जल भराव के साथ सड़क तथा हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई है। ट्रैकिंग और हिमालयी क्षेत्रों की यात्रा की योजना बना रहे लोगों से मौसम में सुधार होने तक यात्रा स्थगित या पुनः विचार करने तथा संबंधित निकायों की सूचनाओं और निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने संभावित मौसमी आपदा के जोखिम को देखते हुए संबंधित निकायों से आवश्यक तैयारी, समन्वय और पूर्व सतर्कता अपनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आश्विन 9 से 11 गते तक देश के विभिन्न स्थानों पर गरज चमक, आंधी और भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने सभी नागरिकों से सुरक्षित रहने, सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी अपनाने का भी आग्रह किया है। भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का जोखिम बढ़ने की आशंका को देखते हुए मकवानपुर जिला प्रशासन ने कांति राजमार्ग और भैंसे भीमफेदी देवराली कुलेखानी सड़क पर रात में यातायात रोकने का निर्णय किया है। प्रशासन के अनुसार आश्विन 9 से 11 गते तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान दोनों सड़कों पर सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक ही यातायात की अनुमति होगी। प्रशासन ने यात्रियों से निर्धारित समय में ही यात्रा करने और संभावित जोखिम से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए बीपी राजमार्ग के निर्माणाधीन ट्रैक का काम कुछ दिनों के लिए स्थगित करने की तैयारी की है। बुनियादी ढांचा विकास मंत्री सुनील लम्साल ने बताया कि संभावित बारिश और भूस्खलन के जोखिम को देखते हुए यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने यात्रियों और आम लोगों से यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने और अनावश्यक जोखिम न लेने का आग्रह किया है। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने भूटिकोशी बाढ़ में लापता और जान गंवाने वाले विद्युत प्राधिकरण कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को तत्काल 5 लाख रुपए राहत देने की जानकारी दी है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को 6 महीने तक वेतन का 50% भी उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री श्रेष्ठ के अनुसार बाढ़ के बाद

तथा कृषि वन एवं पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी द्वारा प्रस्तुत संक्रामक पशु रोग नियंत्रण विधेयक पर विचार के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। बैठक में सांसदों ने त्योहार के दौरान दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, गैस की आपूर्ति, बाढ़ भूस्खलन प्रभावितों के राहत पुनर्वास और भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर सरकार की तैयारियों पर ध्यान आकर्षण कराया। सांसदों ने आपदा से पहले प्रभावी पूर्व सूचना और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा जोखिम युक्त सड़कों की समय पर मरम्मत की मांग की। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल आश्विन 8 गते गुरुवार सुबह

रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि तापमान बढ़ने और हिम नदी के तेजी से पिघलने का सिलसिला जारी रहा तो दुनिया को और गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। गुटेरेस ने 3 वर्ष पहले नेपाल दौरे के दौरान भी हिम नदी के तेजी से पिघलने को लेकर विश्व समुदाय को चेतावनी दी थी। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने आज सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था रेडियो नेपाल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेडियो नेपाल के मुख्य प्रसारण, संगीत, नाटक और समाचार स्टूडियो का अवलोकन कर समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारण और तकनीक के बारे में जानकारी ली। मंत्री तिमल सिन्हा ने रेडियो नेपाल को अन्य संचार माध्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए नागरिकों को सही और विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने सार्वजनिक सेवा प्रसारण को मजबूत बनाते हुए सूचना की पहुंच से बाहर रहे नागरिकों तक सूचना पहुंचाने को प्राथमिकता देने की बात कही। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा क्षेत्र में आज फिर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार अफगानिस्तान से आतंकवादियों ने पाकिस्तान में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम बना दिया। इसके बाद अफगान तालिबान बलों ने पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर मोर्टार और अन्य भारी हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की सीमा चौकियों और रक्षात्मक ठिकानों को निशाना बनाया। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। तनाव के बीच पाकिस्तान ने आज दावा किया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 8 ड्रोन मार गिराए गए। इनमें 4 ड्रोन तोरखम सीमा के पास और 4 कोहाट के आसपास गिराए जाने की बात कही गई है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंतिम इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। परसों 9 गते शुक्रवार से 11 गते तक देश के विभिन्न स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना। आवश्यक तैयारी, समन्वय और पूर्व सतर्कता अपनाने के लिए संबंधित निकायों से प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का आग्रह। प्रधानमंत्री शाह कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। भूटिकोशी बाढ़ के बाद ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए 3.90 खरब रुपए से अधिक की आवश्यकता पड़ने का प्रारंभिक अनुमान। और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में फिर से तनाव शुरू। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: 鬼。
1: 哦，爸爸来了，俺们这边的表演是很赞的吧？大哥，来，这边别上来，来，咱们上那叫什么名？来，
2: 你玩啥呢？
3: 你不打的狗呢？你不打，不打。
2: रात अझै बाँकी छ एक किसिम बसिकन ती कुरा

जो नहीं जात बुलायहु सुख सनकादिक ध्यान, बिनु ही बुलाए जात सुई घर घर ब्रज बनितान। भगवत राज्य में प्रेम को कति ठूलो महिमा, जुन पूर्णतम पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण सुखदेव सनकादि परमहंस को ध्यान में जति आह्वान करे जान संकोच मान्छन्, तर ब्रज का गोपिनीहरूको प्रेम में वशीभूत उनी ब्रह्मनन्द कुमार नबोलाउँदा पनि घर घर में भ्रमण गर्छन्। नंद नंदन गोपी प्राण जीवन श्रीकृष्ण चरण में अविरल भक्ति को याचना गर्दै कार्यक्रम अध्यात्म संदेश में यहाँहरूलाई सप्रेम राधे राधे। निष्काम प्रेम को बल लेने भगवान भक्त को आधीन रहन्छन् र असंभव एवं अप्राप्य लाग्ने कार्यहरू सजिले भक्तहरूलाई वितरण गर्छन्। त्यसैले ब्रजरस रसिक संत उनलाई अलबेलु अर्थात विचित्र प्रकारको अनुपम स्वभावले युक्त मित्र भनेर सम्बोधन गर्छन्। अलबेलु श्याम सुन्दर प्रेम को बंधन में के गर्छन् श्रवण गरौं प्रस्तुत पद में। ब्रजभाषा में रचित प्रस्तुत पद को संगीत पनि जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजबाट दिएको हो भने इसमें आवाज रहेको छ गायक सूर्य।